0: में मना चयो त मौलाना फज़ल रहमान शहीदन बाबा ॾिनल पंहिंजो बयान वापसि वठे। बयान वापसि वठण सां मौलाना जी इज़त घटि न थींदी। मौलाना फज़ल रहमान मामले खे अनाज मसालो न बणाए शहीदनि ऐं गाज़ियुनि बाबति बयान जी सख़्त लफ़्ज़नि ऐं मज़ामत करियूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो ऐं असांजो फ़ख्रु आहिनि। बयानबाज़ीअ सां शहीदनि जे रुतबे को बि नुक़सान नथो पहुचे। संगरार जी प्रिया कुमारी ऐं मेहड़ जी उजाला परवीन समेत सिंध मां अगवा ऐं गुम थियल 10 खां वधीक ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ अॼु बबरलो बाईपास ते धरणो हयो वेंदो। मुज़ाहिरनि जूं इंतिज़ामिया सां ॻाल्हियूं नाकाम। धरणे में मौजूदु प्रिया एक्शन कमेटी अॻवाननि ऐं शहर नेत जा ख़तमु करणु ऐं अॼु वारो धरणो मुलतवी करण खां साफ़ इनकार करे छॾियो। प्रिया जे बाज़ियाबी लाइ जुड़ियल नई GIT बि रदि। अॻवाननि चयो त पहिरियां प्रिया कुमारी समेत अॻवा कल समूरा ॿारा खणी अचो, पोइ इतिजाज ख़तमु कयो वेंदो। अॻु बि अहिड़ियूं GITs जुड़ी चुकियूं आहिनि, पर प्रिया जी बाज़ियाबी न आहे थी। रोज़ GITs जोड़ण बदिरां मासूम प्रिया खे बाज़ियाब करायो वञे। संगरार जे मासूम प्रिया कुमारी जे वालिद राजकुमार जी अॼु वारे बबरलो धरणे खां लातालकी ज़ाहिर करे छॾी। रोहिड़ीअ में मुखी ईश्वर लाल सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राजकुमार चयो त प्रिया कुमारी जे बाज़ियाबी लाइ असां पुलिस ऐं लाॻापले इदारनि जे कोशन मां मुतमैन आहियूं। रोड बंदि करण समेत कंहिं बि गैर कानूनी अमल जो हिसो न बणजंदासीं। मुल्क छॾे वञण वारियूं ख़बरूं बि कूड़ियूं आहिनि। नई GITअ में समूरनि इदारनि जा नुमाइंदा शामिल आहिनि। उन सां भरपूर सहकार कंदासीं। सिंध हुकूमत सखर जे इलाइक़े संगरार मां 5 साल अॻु अॻवा कयल निंगरी प्रिया कुमारीअ जी बाज़ियाबी लाइ नई जॉइंट एक्शन इन्वेस्टिगेशन टीम जोड़े छॾी। DIG सखर जी सरबराहीअ में GIT जांच करे 1 महीने अंदरि रिपोर्ट जमा कराइण जी पाबंदी हूंदी। GIT में SSP सखर, SSP शिकारपुर, SSP लाड़कणो ऐं DSP सखर शामिल आहिनि। ISI, MI, IB रेंजर जा मेजर रैंक जा आफिसर बि मेंबर तौरु शामिल हूंदा। घरू खाते GIT नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। सिंध हुकूमत सरकारी स्कूल जे दाख़िला निज़ाम खे मुकमल डिजिटलाइज करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। हर शागिर्द लाइ मुनफ़रद दाख़िला ID कार्ड तयारु कई वेंदी, जंहिंखे बे फार्म सां ॻंढियो वेंदो। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि नादरा अमलदारनि सां आम गॾिजाणे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गौर। सैयद सरदार शाह चयो आहे त सिंध जे स्कूलनि में टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल खे वधायो पियो वञे। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जे डिजिटल हाज़िरी निज़ाम ते कमु आख़िरी मरहले में आहे। हर शागिर्द जी दाख़िला नादरा जी तस्दीक सां डिजिटल तौरु महफ़ूज़ हूंदी। दुरुस्त डेटा जे बुनियाद ते तालीम मनसूबाबंदी ऐं सुधारनि खे वधीक मौसर बणाए सघिबो। मलीर में सुपर हाईवे कोटिया टाउन गेट वे जो मुबैना पुलिस मुक़ाबलो 2 फोरू मारिजी विया। पुलिस मौजि मारिजी वियल फोरन जी सुञाणप सईद वलद मूरदीन ऐं शेर खान वलद महराब तौरु थी आहे। फोरन जा लाश एम्बुलेंस वसीले जिना इस्पताल मुंतक़िल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। रहीम यार खान वेझो बस्ती गुजरा रोड ते मुबैना पुलिस मुक़ाबले में 1 ॾुहारी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि स्नैप चेकिंग दौरान रोकण ते मोटरसाइकिल सुवार हथियारबंदनि पुलिस अहलकारनि मथां फायरिंग करे ॾिनी। जवाबी फायरिंग में 1 हथियारबंद थॾे ते मारिजी वियो। संदसि ॿिया साथी फरार थी विया। मारिजी वियल ॾुहारनि जे फरार थी वियल साथियुनि जी गिरफ़्तारी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे। DPO रहीम यार खान इरफान समो कामयाब ऑपरेशन ते पुलिस टीम खे शाबाश ॾिनी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नतो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ?
2: न दा, आसाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़।

0: अठे बजे ताईं, आचर सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं।
1: वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0333-07-1553।
2: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए FM 88 नेटवर्क।

जी हा समय वापसि जेको प्रोग्राम रोशन सुबह में ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेरापुर, सकरंड, मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। साईं मुंहिंजा अॼुकल्ह फ़ोटुनि जो दौरु तमामु घणो थी वियो आहे ऐं फ़ोटू कढाइणु अॼुकल्ह जेको तमामु घणो फैशन थी चुको आहे ऐं पंहिंजो कुझु ॻाल्हियूं इहे बि आहिनि ऐं इहो बि चयो वञे थो त फ़ोटू कढाइणु गुनाह आहे, पर कुझु इंसाननि जूं मजबूरियूं बि आहिनि। जिते तव्हां ॾिसो तव्हां शिनाख़्ती कार्ड ठाराईंदव या NIC ठाराईंदव त हुन में फ़ोटू ज़रूरी आहे। जेकॾहिं पूरी दुनिया जे कहिड़े बि मुल्क में तव्हां ॿाहिरि वेंदव पर जेकॾहिं पासपोर्ट ते फ़ोटू न हूंदो त तव्हां ॿाहिरि नथा वञी सघो। ऐं जेकॾहिं तालीमी पंहिंजो लिहाज़ खां ॾिसजे त असां जेके तालीम में तव्हां एडमिशन फॉर्म भराईंदो या एग्ज़ाम फॉर्म हूंदो त हुन में बि फ़ोटू ज़रूरी आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि गवर्नमेंट जॉब आहे या जेका प्राइवेट जॉब आहे त उन में बि तव्हांखे डॉक्यूमेंट्स में तव्हांखे फ़ोटू ज़रूरु ॾियणा पवंदा। जेकॾहिं तव्हां हिकिड़े आम नॉर्मल तव्हां CV ठाराईंदव त उन में बि तव्हांजा फ़ोटू ज़रूरु लॻंदा। ऐं अॼुकल्ह त फ़ोटुनि जो एतिरो रवाजु थी वियो आहे जो जेकॾहिं असां मानी खाऊं था त बि फ़ोटू कढूं था, घुमणु फिरणु वञूं था फ़ोटू कढूं था, फेसबुक ते, स्टेटस ते ऐं टिकटॉक ते जिते किथे पंहिंजे फ़ोटो जो सिस्टम तमामु घणो हूंदो आहे। ऐं सेल्फियूं त अॼुकल्ह तमामु घणियूं थी वञनि, जिते बीहंदासीं उते ज़रूरु चवंदासीं बाबा अचो बीहो त सेल्फी थी वञे। सो फ़ोटुनि जो तमामु घणो रवाजु थी वियो आहे ऐं फ़ोटुनि जी हर ॻाल्हि उथण वेहण में सुम्हण में जेकॾहिं को धकु थो लॻे त पोइ बि असां चऊं था इहो फ़ोटू कढी ऐं असां स्टेटस लॻायूं त माण्हुनि खे ख़बर पवे। जेकॾहिं को माण्हू तबियत सही नाहे, बीमार थी पियो आहे, जेकॾहिं को माण्हू ड्रिप चढ़ाए थो पर पोइ बि असां फ़ोटू कढी पंहिंजो स्टेटस ज़रूरु लॻाईंदासीं त ख़बर पए माण्हुनि खे त मूंखे अॼु बुखार हुयो ऐं मां ड्रिप चढ़ाई आहे। बहरहाल मास्टर मंज़ूर कलाम आहे ऐं उन में बि हिकिड़ो फ़ोटूअ जो ज़िक्र अचे पियो, अचो बि गॾिजी ॿुधूं।

अजी साईं जा पाण ॻाल्हि कंदासीं ज़िंदगीअ सां मुहबत इंसान जी ज़िंदगीअ जो मक़सदु छा आहे ऐं ज़िंदगी में लाज़वाल ख़ुशियूं हासिलु करण जे हवाले सां रब पाक सभिनी इंसान में हिकु ई जज़्बो रखे थो ऐं उहा आहे मुहबत। असीं मुहबत वसीले ॿिए कंहिं परेशान हाल जी ख़ुश्क चपड़नि ते का मुर्क आंदी हुजे ऐं ज़िंदगीअ में मुहबत ई उहा वाहिद राहत आहे जेका पाइदार आहे। उहा मुहबत असांखे उन्हनि इंसाननि ज़रिए मिले थी जेकी पाण बि तव्हां सां मुहबत कनि था ऐं माण्हुनि खे ख़ुशियूं ॾियण ख़ातिर उहो सभु कुझु कनि था जेको तव्हांजे वस में आहे। पंहिंजी दिलि जो सचो ऐं अज़ीम मक़सदु रखूं ऐं उहो पोइ मक़सदु हासिलु करण लाइ जिदोजहद पाण शुरू करे ॾियूं। उन्हनि सभिनी सां मुहबत करियूं जेकी तव्हांजी दौलत न पर तव्हांजी ज़ात सां प्यारु कनि था ऐं प्यारु उहो हुजे जेको बिना मतिलब जे हुजे ऐं मतिलब वारो प्यारु कॾहिं बि न हुजे ऐं संदसि ख़ुशियुनि में पाण उन्हनि जे में शरीक थी वञूं। अहिड़नि ई माण्हुनि सां मुहबत वंडणु घुरिजे जेके असांजी मुहबत ऐं हिकु मुर्क ॾियण जे इंतज़ार में वेठल आहिनि पर उहा ई मुर्क उहा ई मुहबत मतिलब वारी न हुजे।

जी असां में न कुझु दोस्त जे नाला अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद अली महेसर फ़क़ीर एजाज़ कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार जतोई हरसा जी गढ़ी कोरकाणे खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी ऐं नारा स्टाफ सखर खां एजाज़ अली जुणे जो मुनीब रहमान जुणे जो मुजीब रहमान जुणे जो ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर ख़ान मक्सी ऐं ॻोठु मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर ऐं अहद अकबर शादाब चांडियो ॻोठु हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्लाह जतोई ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठु मोलेरिणी माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार अली ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं नंढिड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी।

अजय समय न प्रोग्राम रोशन सुबह जारी हूं सारी है तमा जो सा साथ रंदो ठीक 11 वगे ते कदे में वंजो हन वक्त हलाऊं प्या न्यूज़ ब्रेक की तरफ आए कमर्शियल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदासी।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: फरामी मुअत्तल ईरानी मीडिया मूजिब आवाज ऐं बोस शहर में धमाका ॿुधा विया अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो चवणु आहे त ईरान में छहें ॾींहं वारी कार्रवाई मुकमिल करे वरिती आहे कार्रवाई जो मक़सदु ईरानी फ़ौजी सलाहियत खे कमज़ोर करणु हो विच ओभर में 50,000 अमेरिकी फ़ौजी मौजूदु आहिनि ईरानी हमलनि सां अमेरिकी फ़ौज जे ऑपरेशनल सरगर्मियुनि ते को बि असरु न पियो आहे

कतर ईरान खिलाफ़ फौजी कार्रवाई में शामिल थियण वारनि ख़बरनि खे सख़्तीअ सां रद्द करे छॾियो। कतर ईरान ख़िलाफ़ न कंहिं जंग में हिसो हो न ई बणजंदो। इसराइली मीडिया जूं रिपोर्ट्स बेबुनियाद ऐं गुमराह कंदड़ आहिनि। कतरी परॾेही वज़ारत पंहिंजे बयान में चयो आहे त इसराइल जी प्रोपोगेंडा जो मक़सदु कतर जे टकियाणे वारे किरदार ते नाकारी असरु विझणु आहे। कतर ख़िते में अमुन ऐं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: स्कूलते ड्राइविंग जी सिख्या सां गॾु इंजन जी मालूमात रोड सेंस हाईवे ऐं मोटरवे बुक जी मालूमात पिणु ॾिनी वेंदी आहे
1: नंढियुनि ऐं वॾियुनि गाॾियुनि सां गॾु आटो ऐं मैनुअल गाॾियूं पिणु सिख्या जे लाइ मौजूद आहिनि
0: अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल एड्रेस स्टेशन रोड लग सपना होटल घिटी लाड़काणो अलकासमिया कार शोरूम अलकासमिया कार शोरूम ते नयन ऐं पुराणनि गाॾियुनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त कई वेंदी आहे गाॾियुनि जे कागज़ात जो कमु ट्रांसफर फाइल वेरिफिकेशन CPLC टैक्स क्लियर कयो वेंदो आहे अलकासमिया कार शोरूम एड्रेस राइस कैनाल रोड दुबई कार वॉश लाड़काणो राब्ते जे लाइ शकील अहमद मौर्यो मोबाइल नंबर 03003436498 ऐं 03134264 98
2: खुशखबरी लाड़काणे जो मशहूर ऐं मेडिकल जी दुनिया जो वॾो नालो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी MBBS FCPS DOMS हदारती गोल्ड मेडलिस्ट अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन हिते अखियुनि जे बीमारियुनि रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो कारो पाणी मोतियो पाणी उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीननि सां कयो वञे थो जिना अस्पताल कराची लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद खैरपुर मेडिकल कॉलेज गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन इंडस हॉस्पिटल लग लेडीज़ जेल रोड लाड़काणो टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 9 बजे ताईं अंगारो खमीस ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं यादि रखंदा जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी राब्ते लाइ मोबाइल नंबर 03003410560 ऐं 03173276619
3: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज GA FM 88 नेटवर्क

जी समय वापसि चुका आहियूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं रोशन सुबुह मां प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। साईं मुंहिंजा अॼु पाण ॻाल्हि कंदासीं माकड़ जी, त माकड़ ही हिकु क़िस्म जो उॾामंदड़ हिलाल जीत आहे ऐं हारी कुड़मीअ जो वॾे में वॾो दुश्मन जीत आहे। तव्हांखे थोरी मालूमात ॾींदासीं माकड़ जे हवाले सां, छो त जेके पुराणे दौर जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे त ख़बर आहे त माकड़ छा आहे, पर जेके अॼोको नौजवान आहे उनखे का ख़बर कोन्हे त माकड़ छा आहे। साईं जा हिन खे ख़ासि करे ॻोठाणा माण्हू तए ते तरे या देगड़ी में भुञी बि खाईंदा आहिनि ऐं हिन जीत में कुदरती तौर ते घणो सणभ मौजूदु हूंदो आहे ऐं तंहिं करे हिन खे पचाइण वक़्तु गिहु तेल या मखण जी काई बि ज़रूरत न पवंदी आहे ऐं माकड़ जॾहिं बि जिते बि ईंदी आहे पोइ उतां जा फसल खाई चट करे छॾींदी आहे ऐं माकड़ पंहिंजी नसुल खे वधाइण में बि देरि नाहे कंदी ऐं हाणे माकड़ मारण या भॼण जा जदीद औज़ार बि निकिता आहिनि। अॻु में जिते बि माकड़ ईंदी हुई उते फसल पोखूं खाई चट करे छॾींदी हुई ऐं उते ॾुकर थी पवंदो हुयो। हिन जदीद दौर में माकड़ जीतमार दवाऊं तयारु कई वियूं आहिनि उनजे ख़तमु करण लाइ, जिते स्प्रे ऐं इस्तेमालु करण सां माकड़ ऐं संदसि फसल खे बुनियादी तौर ते पंहिंजो उनखे माकड़ खे मारे ख़तमु करे छॾे थी ऐं पंहिंजो फसल सही नमूने बहितर नमूने तयारु थी वेंदो आहे। त साईं मुंहिंजा माकड़ हिलाल जीत आहे। पुराणे दौर में जॾहिं बि माकड़ ईंदी हुई त खाधी वेंदी हुई ऐं जॾहिं बि वक़्तनि वक़्तनि माकड़ ईंदी आहे, अलाह साईं जो हिकिड़ो कुदरती सिस्टम आहे उनखे कोई बि रोके कोन थो सघे। बहरहाल माकड़ फसल लाइ नुक़सानकारु आहे ऐं जेकॾहिं इंसानु खाईंदो त उन लाइ हिलाल बि आहे।

साईं मुंहिंजा हिकिड़ो एहतियात जो पंहिंजो ज़रूरी आहे तव्हांखे ॿुधाइणु, ऐं तव्हां पंहिंजो कोशिशि कंदा रहो त जेके तव्हांजा ॿार नंढड़ा स्कूल वञनि था ऐं जेके बुज़ुर्ग वॾा ॻोठ में निकिरनि था, ॿाहिरि में निकिरनि था, या अॼुकल्ह शहर में बि कुतनि जो आज़ार तमामु घणो आहे। कुते जो ॾाढणु या चक पाइणु जा असांजे मुल्क में केतिरा ई वाक़िया पेश आया आहिनि, जेके माण्हुनि जे मौत जो कारण बि बणिजनि था। ऐं कुते जो चकु हुजे या कुए जो चकु हुजे या वरी ॿिलीअ जो, उन्हनि जो ॾाढणु या चक पाइण सां उन्हनि जे वात मां जेका गिग निकिरे थी ऐं इंसान

जे जिस्म में कहीं भी हिस्से में मुतासिर उन खे करे थी छो जो उन जे गिग में खतरनाक जरासीम थियन था जेकी माण्हुनि जे मौत जो जल्दी कारण बणजनि था। अहिड़नि जानवरनि या ख़तरनाक जीतनि जे चक पाइण खां पोइ जल्दी कंहिं न कंहिं शहर जे वेझे हॉस्पिटल में वञी करे पाण इलाज कराइजे जीअं कंहिं वॾे नुक़सान खां माण्हू पाण बची सघे ऐं नंढनि ॿारनि खे बि उहा एहतियात हिदायत कजे त जे उहे कूअनि कुतनि ॿिलनि ऐं ॿियनि ख़तरनाक जीतनि ऐं जानवरनि सां हरगिज़ हरकत न कनि जीअं पाण खे पोइ पछताव न थिए।

0: सुविधा।
1: फकीरी इंडेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: जो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8 जियो सिंधी जियो सिंधी।
2: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा

0: कफील देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8।

0: जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबुह जो आखिरी लम्हा आहिनि। आखिरी लम्हनि में तव्हांजी जेका सिक आहे, प्यार आहे, मोहबत आहे, चाहत आहे, ऐं तव्हां जेको असां गॾु रहियो ॿिनि कलाकनि जो जेको सफ़रु आहे उन में कुझु नाला तव्हांजा असां ताईं मौजूदु आहिनि जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। तव्हांजा नाला तव्हांजा दोस्त ॿुधंदा त अॻो चक शहर खां नई मंगरियो बि असांखे यादि कयो ऐं कुरेशी माला सखर खां अब्दुला चनो ऐं लाड़काने खां आमिर जागिरणी बलोच बि असांखे यादि कयो, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, वसीम जरवार मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलिक, रेहाना खान बखर खां ऐं हाजी सोरा मंगरियो, फ़रहान मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो, ॻोठु सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, आसिफ अली चाचड़, वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, ख़ालिक लाशारी, इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, ॻोठु ठुल जुणे जो खां अबरार अली जुणे जो, इक़रार अली जुणे जो ऐं वकार अली जुणे जो, क़ुर्बान अली ख़ासि खिली झंडो मरी खां ऐं असांखे यादि कयो दुआ लाड़काणे खां। सभिनी जे नां कयूं पिया जलाल चांडे जो ख़ुशि नगमो गॾिजी पिया ॿुधूं।
1: केतन भागे नज़र मारी, केतन भागे नज़र।

जी सर, मुझे कुछ दोस्त जन लाला अची विया एस एम एस ज़रिए मोहम्मद शरीफ पंहिंजो छुटो आहे या भुटो आहे, हुनजी मिसस्पेलिंग में थोरो फ़र्क़ु आहे। दरेजी बलोचिस्तान खां ऐं लाड़काणे खां आमिना बतूल बि असांखे यादि कयो।

जी समय न जलाल चांडी जे न खूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंची पे पंहिंजी पुॼणी ते पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणी जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: अब्बास कम्युनिकेशन टावर ऐं लार्ज शिमाट जो चवणु त ईरान में छहें ॾींहं वारी कार्रवाई मुकमिल करे वरिती आहे. कार्रवाई जो मक़सदु ईरानी फ़ौजी सलाहियत खे कमज़ोर करणु हो. ओभर में 50,000 अमेरिकी फ़ौजी मौजूदु आहिनि. ईरानी हमलनि सां अमेरिकी फ़ौज जे ऑपरेशनल सरगर्मियुनि ते को बि असरु न पियो आहे.

0: नाकारी असर विझण आहे। कतर खिते में अमुन ऐं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सिफारती कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नाकाम बणाइण लाइ इसराइल साज़िश कई आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेनस चयो आहे त इसराइली अंसरनि ईरान सां मुआहिदे ते राहतो हणण लाइ अमेरिका मलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम बावजूद अमेरिकी मुफ़ाहिदनि खे पहिरीं तरजीह ॾिनी वेंदी। राहतो हणण लाइ अमेरिका मलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम ते इसराइल अमेरिका में अवामी राय जी जंग बि हाराए रहियो आहे। ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं बिजली घरनि ते अमेरिकी हमलनि जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी ॾेई छॾी। बाब अलमंद बंदि करण जी बि तयारी। ईरानी फ़ौज जे ख़ात्मुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्कारी चयो आहे त अबनार मुज़ ईरान जे रेड लाइन आहे। अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मजीद अलकरमनिया चयो आहे त खिते जी मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की वकार सलामती ऐं सरहदनि जे तहफ़ करणु ॼाणे थी। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि ईरान बाबुल मन बंदि करण जे हवाले सां होसीन ताईं पैगाम पहुचाए छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जे इलेक्शन में बि चीन हथ चिराग जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइलूं हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़तम थींदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सर मस्त धरती।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्टों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें। पहजो शहर पहजो घर सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

मुंहिंजा बेटा साईं बहितरीन कलाम खां पोइ कुझु दोस्तनि मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं। मोहम्मद उर्स पाण जो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे ऐं हुन सां गॾु आहे शुएब अली सेठार ऐं मोहम्मद उर्स बि सेठार, ठीकु आहे, ऐं ॻोठु अलह बचायो सेठार खां ऐं शाहिद बबर जे आहे जेको आहे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई। दादा तव्हां ॾाढा ख़ुशि नसीब आहियो, तव्हांजो मैसेज पढ़ण खां पहिरियां ई शाहिद बबर जी आवाज़ में मूं हिकिड़ो सॉन्ग प्ले करे छॾियो हुयो। हालांकि शाहिद बबर ॾाढो सुठो सिंगर आहे, मूंखे बि हुन जा सॉन्ग्स ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, पर तव्हांजी त फरमाइश ऑलरेडी पूरी थी चुकी आहे। वॾी महिरबानी, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। लख कुर्ब लख एहसान अव्हांजा, तव्हांजे लाइ खोड़ दफ़ा भलीकार। अहिड़े तरीक़े सां मोरे शहर जे गचे रोड खां असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे मोहम्मद साहिद सूमरो। हुन सां गॾु आहे डॉक्टर जावेद अली सूमरो ऐं आदा जन चवनि था त असांखे मुमताज़ लाशरी जी आवाज़ में कलाम उतरायो, जेको डेडिकेट कनि था एडवोकेट मोहम्मद अली भुटो साहब खे, आदिल बुढ़ियो ऐं पंहिंजा समूरा दोस्त ऐं सभिनी लिसनर्स खे बि चवनि पिया अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा मिठा। ऐं अदा जन लिखियो आहे त गुलाब भाई कैसे हैं आप, अदा मां ठीकु ठाक, तव्हांजूं दुआऊं ऐं चवंदा तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे, तव्हांजो आवाज़ु ॾाढो सुठो आहे, त तमामु घणी महिरबानी मिठा। तव्हांखे असांजो आवाज़ु पसंदि आहे, तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आहे, हुन जे लाइ असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं तव्हांजा ऐं कोशिशि कयूं था तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो असां मुमताज़ लाशरी जे आवाज़ में सॉन्ग बि को ॿुधायूं।

तमन्ना मिठा साईं, ज़िंदगी खे अक्सर एक इम्तिहान सां तशबीह ॾिनी वेंदी आहे, छो त हिन दुनिया में हर इंसान खे न मुख़्तलिफ़ हालतुनि, मुश्किलातुनि ऐं आज़माइशुनि मां गुज़रणो पवंदो आहे। जीअं इम्तिहान में शागिर्द जी क़ाबिलियत, महिनत ऐं सब्र खे परखियो वेंदो आहे न, तीअं ज़िंदगीअ में बि इंसान जे हौसले, ईमान ऐं बर्दाश्त खे परखबो आहे। ज़िंदगी में कॾहिं ख़ुशियूं मिलनि थियूं त वरी कॾहिं ॾुख ऐं तकलीफ़ूं, उहे सभु हालतूं असल में इम्तिहान जो हिसो हूंदियूं आहिनि। जेकी माण्हू सब्र, हिमत ऐं महिनत सां उन्हनि हालतुनि खे मुंहुं ॾिए थो, उहो कामयाबु थींदो आहे। जेॾहिं त जेको मायूस थी वञे थो, उहो ज़िंदगी जे इम्तिहान में पोइते रहिजी वञे थो। ज़िंदगी जो इम्तिहान सिर्फ़ु ॾुखनि ताईं महदूदु न आहे, पर ख़ुशियूं बि हिकु क़िस्म जो इम्तिहान अथव। जॾहिं इंसान खे कामयाबी दौलत सां इज़त मिले थी न, तॾहिं बि उहो ॾिठो वेंदो आहे त हू उन्हनि मां या उन्हनि खे कीअं इस्तेमालु करे थो, छा हू शुक्रगुज़ार बणिजे थो।

गुरू रमी अची वञे थो। हीउ इम्तिहान इंसान खे सेखारे थो त हू हर हालत में मज़बूत रहे, पंहिंजे मक़सदनि ते क़ाइमु रहे ऐं सचाई जो साथ न छॾे। महिनत, ईमानदारी ऐं सब्र अहिड़ा औज़ार आहिनि जेके इंसान खे ज़िंदगीअ जे इम्तिहान में कामयाबु बणाइनि था। ज़िंदगी हिकु अहिड़ो इम्तिहान आहे जेको हर कंहिंखे ॾियणु लाज़मी आहे। हिन इम्तिहान में कामयाबी हासिल करण लाइ ज़रूरी आहे त इंसान हिमत न हारे, हर मुश्किल खे सिखिया सम्झे, अॻिते वधंदो रहे। अहिड़ी तरह त इंसान पंहिंजी ज़िंदगीअ खे कामयाबु ऐं बामक़सदु बणाए सघे थो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों, छाइयों, कील महासों और कर्मी दान

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मुझसे।
1: हमेशा तैयार ऐं मुतमिन। एड्रेस ए टू जेड यूनिफॉर्म जीपीओ रोड लाड़काणो। राबते जे लाइ मैनेजर वकार अली। मोबाइल नंबर 03131175761 2।
2: खुशखबरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ऐं मेडिकल जे दुनिया जो वॾो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। हिते हॾनि ऐं जोड़नि जो सूर, कुन रग जो सूर, वाई ऐं चेल जो सूर, वॾी उमिरि जे माण्हुनि ऐं नंढनि ॿारनि में हॾनि ऐं जोड़नि जा मसइला, फ्रैक्चर, फिरियल पेरनि ऐं जंगुनि खे ठीकु करणु, हॾनि ऐं जोड़नि जे हर क़िस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनुनि ज़रिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर, हॾनि ऐं जोड़नि जो माहिर सर्जन। टाइम आचर खां जुमो, रोजानो सुबुह जो 11 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। एड्रेस बैतुल शफ़ा बोन ट्रामा क्लिनिक, लखनऊ देरो चौक, लाड़काणो। याद रखंदा, डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिनि। एड्रेस सखर टाउनशिप, RF बिल्डर्स, बंगलो नंबर 20, सेक्टर नंबर 3, घोड़ा गेट, सखर। टाइम मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03368640 25 फोन नंबर 07440571 99।
1: दुनिया में असांजे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सां वधी रहियो आहे।
3: हिन जा मुख्य कारण मौरूसी, मोटापो, वर्जिश न करण, गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वग़ैरह आहिनि। शुगर जे मर्ज जूं ख़ास ख़ास अलामतूं ई आहिनि: बार बार पेशाब जो अचणु, अचानक वज़न घटि थी वञणु, बुख घणी लॻणु, मथे ते दॿा हुजणु, हथनि ऐं पेरनि जो सड़णु, सॼे जिस्म में बाहि वांगुरु महसूसु थियणु, कमज़ोरी महसूसु थियणु, पेरनि में फट थियणु, टंगुनि में गिढियूं पवणु ऐं कंध जो गोरो थियणु। वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

एज हूंदा आहिनि सॉन्ग्स. ऐं मिसाल तौरु रिमेक्स त ईअं आहे त तव्हांखे तक़रीबन मुंहिंजी पसंदि जो अंदाज़ो जेके मुंहिंजा लिसनर्स आहिनि उन्हनि खे त लॻी चुको आहे, पर मां कोशिशि कंदो आहियां त हिन प्रोग्राम में पंहिंजी पसंदि खां वधीक तव्हांजी पसंदि खे अहमियत ॾियां. बिल्कुलु तव्हांखे मां पंहिंजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि. अस्सलामु अलैकुम भाईजान. वालेकुम अस्सलाम. जुमा मुबारक आपको. सॉन्ग मुमताज़ मोलाई ऐं असांजा अथई शोक नवाबी ऐं पन्नू अकल खां सैयद इमदाद अली शाह. अच्छा, पन्नू अकल खां साईं इमदाद अली शाह साहब, तव्हांखे स्पेशली मां भलीकार चवां थो. मोहम्मद ताहिर लुंड ऐं ज़वार मोहम्मद बचल, इहे उन सां गॾु आहिनि. वॾी महिरबानी भाउ, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो. साईं इमदाद अली शाह साहब, तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग प्ले कयूं था. तव्हां दिलि जाए कयो ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे. त अहिड़े तरीक़े सां ॿिया जेके असांजा लिसनर्स आहिनि जन हाणे हाणे रेडियो सेट ऑन कयो आहे, त उन्हनि खे असां ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती. ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण. त दोस्तनि जा मैसेजिस मुसलसल अचनि पिया, उहे बि शामिलु कंदा हलूं. रियाज़ अहमद पाण खे ॿुधी रहियो आहे बांधीअ मां. ऐं अदाजन चवे थो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. साईं जन चवंदा असांखे मास्तर मंज़ूर जो कलाम ॿुधायो. जी मुंहिंजा मिठा साईं, मास्तर मंज़ूर जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं. ॾाढा सुठा सुठा मास्तर मंज़ूर जा कलाम असांजी लाइब्रेरी मौजूदु आहिनि. ऐं उहे कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेके तव्हां ॿुधा ई न हूंदा. असांजे प्रोग्राम सां गॾु आहे केरु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो. चवनि था अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाउ गुलाब खान, सदाई ख़ुशि हुजो. वालेकुम अस्सलाम अदा पठाण खान खोसा साहिबु, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी. अदा जन चवनि था लैला सूमर जो प्रोग्राम ॿ कलाक कॾहिं हलंदो. अबा लैला जो प्रोग्राम हिन वक़्तु असां वटि ऑनियर थी रहियो आहे, जेको तव्हां ॿुधंदा आहियो राति जो 9 वॻे खां वठी 10 वॻे ताईं. ॿ कलाक जो बि हुनखे टाइम मिली वेंदो, परेशान न थियो. वॾी महिरबानी मिठा, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो. सॉन्ग आहे ज़बरदस्त मुमताज़ मोलाई जी आवाज़ में, अचो त हुनखे इंजॉय कयूं.

ऐं इन सां खां पोइ जेको आहे न न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जो टाइम आहे, तेसिताईं तव्हां हीउ सॉन्ग इंजॉय कयो, न्यूज़ ॿुधो ऐं केॾां बि न वञिजो, ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ GFM 88.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान ऐं अमेरिका जा छह ॾींहं बि हिक ॿिए ते हमला जारी। ॾखण ईरान में अमेरिकी हमलनि में 7 शहरी शहीद। अमेरिकी फ़ौजी मुख्य रोड रस्तनि ऐं रेलवे निज़ाम खे बि निशानो बणायो। ईरानी इख़्तियारनि मूजिबि हलूज़ा सूबे में 5 पुलनि ते हमला कया विया। बंदर अब्बास में रिहाइशी इमारत खे बि निशानो बणायो वियो। जवाब में ईरान जो शाम जे शहर अल तनफ़ में अमेरिका जे स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर ते हमिलो। ईरानी बाज़ारनि इनकलाब जो चवणु आहे त शहीद ईरानी फ़ौजियुनि जो बदिलो वठंदे केतिरा ई फ़ौजी मारे छॾिया आहिनि। रेडार सिस्टम ऐं केतिरा ई अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स बि तबाह कया। कुवैत, बहरैन ऐं बहरैन में अमेरिकी फ़ौजी हंधनि ते निशानो बणायो वियो। कतरी वज़ारत वारा अमेरिकी मिज़ाइल ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दावा।
2: चीन ऐं पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो मुतालबो कनि था। चीनी परॾेही वज़ारत पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त धुरियूं जंगबंदीअ जे मुफ़ाहमती यादाश्त नामे जी पासदारी कनि ऐं वाइदनि ते अमल कनि।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडुनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडुनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जी इलेक्शन में बि चीन हथ चुराइण जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइल्स हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडुनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूदु खामियूं ख़तमु थींदियूं।
2: नंदो में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुतहद ऐं मज़बूत सिंध रैली। बदीन खे पाणी ॾियो ऐं प्रिया कुमारीअ जे आज़ादु करियो जा नारा। अॻवाणनि चयो त पोखाई जी मुंद में पाणी लंप खां सुकी रहियो आहे। पाणी फराहम कयो वञे। प्रिया कुमारी समेत सभई अॻवा थियल ॿार बाज़ियाब कराया वञनि। मीरपुर माथेलो में PP शहीद भुट्टो पारां प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी बाज़ियाबीअ लाइ एहतजाज। IG सिंध खां प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जो अॻवा थियण जी बाज़ियाब जो मुतालबो।

0: कराची के मुख्तलिफ इलाकन में रोड हादसन में बजणा फौत कोरंगी बिलाल चोरंगी वटे मोटरसाइकिल स्लिप थियण सबब अब्दुल अहद फौत थी वियो यूनिवर्सिटी रोड ते
1: Vitality Blast T20 is live and Tapmad is the

0: ऐं कश्मोर जी चाचड़ पुल वटि औरत जो लाश हथ मुड़ुस ते क़तल जो इल्ज़ाम। ॻोठ मोहबली निसराणी वासी शरीफ़ा निसराणीअ जो लाश के बी फीडर मां मिलियो। औरत जे वारसनि चयो आहे त खेस मुड़ुसु क़तल कयो आहे। मुड़ुसु जो बि चवणु आहे त ज़ाल घरां निकिरी के बी बेदर्द जे टपो ॾेई आपघात कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। सचल की सर मस्त धरती
2: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी, लाड़काने जो मशहूर ऐं अॻूणो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो ऐं गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस, रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अली फुलपोटो, फिफड़नि जे बीमारियुनि जो माहिर, MBBS, DTCD

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: वॾनि गाॾियुनि सां गॾु आटो ऐं मैनुअल गाॾियूं पिण सिखिया जे लाइ मौजूदु आहिनि।
1: अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल, एड्रेस स्टेशन रोड, लग सपना होटल, गिटी, लाड़काणो। अलकासमिया कार शोरूम, अलकासमिया कार शोरूम ते नयन ऐं पुराणनि गाॾियुनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त कई वेंदी आहे। गाॾियुनि जे कागज़ात जो कम, ट्रांसफर, फाइल वेरिफिकेशन, CPLC, टैक्स क्लियर कयो वेंदो आहे। अलकासमिया कार शोरूम, एड्रेस राइस कैनाल रोड, दुबई कार वॉश, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ शकील अहमद मौर्य, मोबाइल नंबर 03003436498 ऐं 03134246498।
2: खुशखबरी, लाड़काणे जो मशहूर ऐं मेडिकल जी दुनिया जो वॾो नालो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी, MBBS, FCPS, DOMS, हदारती गोल्ड मेडलिस्ट, अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन। हिते अखियुनि जे बीमारियुनि, रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो, कारो पाणी, मोतियो पाणी, उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीनुनि सां कयो वञे थो। जिना अस्पताल कराची, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी, अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन, इंडस हॉस्पिटल, लग लेडीज़ जेल रोड, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 9 बजे ताईं, अंगारो, खमीस ऐं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं। यादि रखंदा, जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते लाइ मोबाइल नंबर 03003410560 ऐं 03173276719।
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
0: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

गुलाम से नुमराणी जी खूबसूरत आवाज आए ऐं तव्हां एंजॉय करे रहिया आहियो इन सॉन्ग खे चवे थो असांजे दिलि ते तव्हांजी हुकूमत जीअं वणई तीअं हलाए असांखे थींदो बि ईअं ई आहे जंहिंजे दिलि ते अगरि कंहिंजी हुकूमत हूंदी आहे त पोइ उनजी मर्ज़ी हूंदी आहे हुनखे कहिड़े तरीक़े सां हलाए त असांजे प्रोग्राम में बि उन्हनि माण्हुनि जा मैसेज शामिलु कयूं था जंहिंजी असांजे दिलि ते बि हुकूमत आहे इरशाद अली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो मनहड़ो चोदगीअ खां ऐं अदा इरशाद मनहड़े में असांजा काफ़ी दोस्त आहिनि ऐं मनहड़ो ॾाढो भलड़ो शहरु आहे मुहबती माण्हुनि जो शहरु आहे मिठा महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा भाउ चए थो अस्सलामु अलैकुम ऐं मुमताज़ मौलाई जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा प्यारा मुमताज़ मौलाई ऑलरेडी मां प्ले कयो आहे ऐं इनशा ताला कोशिशि कंदुसि त मां तव्हांखे मुमताज़ मौलाई जो कलाम ॿुधायां

रियाज़ अहमद बानी मां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो चवे थो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा मिठा चवे थो। असांखे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधायो यार। बिल्कुलु मास्टर मंज़ूर जो कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ॿियो मैसेज अदाजन कयो आहे, महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, हुनजे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं। लख कुर्ब लख अहसान असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे। सखर खां आई अब्दुर्रहीम अहमद मुगल जे कलाम जी अदाजन फरमाइश कई हुई। अदा साईं, मां तव्हांजे पुसनि जो कलाम प्ले करे छॾियो आहे। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो, खिलंदा रहो, मुस्कराईंदा रहो, ऐं तव्हां समेत जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उहे समूरा अहिड़े तरीक़े सां खिलंदा, मुस्कराईंदा रहनि, अहिड़े तरीक़े सां असांजे शो में बि शामिलु थींदा रहनि।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पहिरियों पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरनि जो इलाज ऐं भॻल हॾनि जो ऑपरेशन बहितरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस: कराची मेडिकल सेंटर, लॻ घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम: रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं, ऐं छंछर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03158794117 ऐं 03337540661।
1: खुश खबरी, ए टू ज़ेड यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काणे ते अव्हां खे हर शइ मिले हिक ही छत हेठां। अव्हां खे आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे, मज़बूत ऐं स्टाइलिश स्कूल बैग्स या पायदार शूज़, ए टू ज़ेड यूनिफॉर्म ते मिले अव्हां खे यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, शूज़ ऐं ॿियो स्कूल जे ज़रूरत वारो सामान बाज़ार खां इंतिहाई घटि क़ीमत में। ओए देर छा जी, अॼु ई अचो, असांजी ख़ुसूसी ऑफर्स जो फ़ाइदो हासिल करियो, ताकि अव्हां जा ॿार रहनि स्कूल जे लाइ हमेशा तयार ऐं मुतमिन। एड्रेस: ए टू ज़ेड यूनिफॉर्म, GPO रोड, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ मैनेजर वकार अली, मोबाइल नंबर 03131157672।
2: खुशखबरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ऐं मेडिकल जे दुनिया जो वॾो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर, MBBS, FCPS, गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। हिते हॾनि ऐं जोड़नि जो सूर, कुन रग जो सूर, वाई ऐं चेल जो सूर, वॾी उमिरि जे माण्हुनि ऐं नंढनि ॿारनि में हॾनि ऐं जोड़नि जा मसइला, फ्रेक्चर, फिरियल पेरनि ऐं जंगुनि खे ठीकु करणु, हॾनि ऐं जोड़नि जे हर क़िस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनुनि ज़रिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर, हॾनि ऐं जोड़नि जो माहिर सर्जन। टाइम: आचर खां जुमो, रोज़ानो सुबुह जो 11 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं। एड्रेस: बैतुल शिफ़ा बोन ट्रामा क्लिनिक, लॻ नओदेरो चौक, लाड़काणो। यादि रखंदा, डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीज़नि जो मुआइनो कंदा आहिनि। एड्रेस: सखर टाउनशिप, RF बिल्डर्स, बंगलो नंबर 20, सेक्टर नंबर 3, घोड़ा गेट, सखर। टाइम: मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03368640025 ऐं फोन नंबर 07440571999।
3: अदी, ॾिसो त ॾे, मुंहिंजी नुंहुं खे औलादी कोन थी थिए।
4: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसीं, हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे।
2: खुशखबरी, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सुमेरा बिरोही, MBBS, FCPS, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, शेख जैद विमेन हॉस्पिटल, लाड़काणो। माहिर अमराज, नॉर्मल डिलीवरी, सीज़र ऑपरेशन, औरतुनि में अंडेदानी, बच्चेदानी, रसोलियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन, बेओलादी जो ख़ासि इलाज ऐं टेस्टूं, हमल दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज, औरतुनि में गैर ज़रूरी पाणी ऐं खून जो इलाज। यादि रखंदा, ग़रीब मरीज़नि खे ख़ासि रियायत ॾिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा बिरोही, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर। एड्रेस: सिंध मेडिकल सेंटर, VIP रोड, लाड़काणो। टाइम: रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं। वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 03330715533।
5: मोरो, नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज़। GA FM 88 Network.

मुझे मिठा सही मोहब्बत इंसान की दिल जो वो पाक सच्चो एहसास है जो दुनिया की हर खुशी का कीमती होंद है। मोहब्बत रुगो के एक शख्स से लागापिल ना है पर वह एक अड़ी वसी जज्बे जो नालो है जो इंसान के इंसान से इंसान के पां रब से इंसान के समूरी कायनात से गंढे तो। मोहब्बत की असल माना है सच्चाई खुलूस कुर्बानी। जदे इंसान कैंसा सच्ची मोहब्बत करे तो उन खुशी में पाँ खुशी समझे तो उन दुखन के पाँजा दुख समझे तो। अड़ी मोहब्बत में को भी मतलब या लालच शामिल ना होंगी बल्कि वह सिर्फ दिल की सच्चाई से बदल होंगी है। मोहब्बत इंसान की जिंदगी के खूबसूरत बनाए थी। वह नफरत हसद कावड़ जड़न मनफी जज्बन के न खत्म करे थी। दिल में नरमी सुकून पैदा करे थी। जै दिल में मोहब्बत होंगी है वो इंसान बेन से हमदर्दी रहम शफकत से पेश इंदो है। अड़े मानू से हर को मोहब्बत कव इस्लाम में भी मोहब्बत के वही अहमियत दिनी वही है। अल्लाह पाक इंसान के पान में मोहब्बत भाईचारे इतिहाद से रहने जो हुक्म दिनो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलम जी जिंदगी मोहब्बत रहम शफकत जो बेहतरीन मिसाल है। पान दुश्मन से मोहब्बत नरमी से पेश इंदा हुआ। मोहब्बत सिर्फ लफ्जन तहदूद ना है होंगी मुझा साई नहीं हुजन घुर्जे पर अमलन में भी नजर अचान घुर्जे। वालदेन से मोहब्बत उस्ताद से इज्जत दोस्तन से वफादारी समाज से खैर ख्वाही वे सब मोहब्बत जहाँ मुख्तलिफ़ रूप अव जडे असे अमलन जरिए मोहब्बत जो इजहार कदा तदें ही उ हकीकी माना में पाक

ममताज राजशहर जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो खूबसूरत समाऊं समातूं त मुंहिंजे मिठा साईं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं इनशाला ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ जुमे वारे ॾींहुं तव्हां सां गॾु हूंदासीं साॻे ई टाइम ते मतिलबु 11 खां वठी 1 वॻे ताईं ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ सां गॾु हूंदासीं ऐं वीदे वीदे तव्हांखे इहो चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो मौसमियाती तब्दीली तमामु घणी अची वई आहे जंहिं सबबु तमामु घणा असरात जेके आहिनि हिन मौसमियाती तब्दीली जा दुनिया ते पिया आहिनि पर ख़ासि तौर ते सिंध जे मथां त उन खां बचण जे लाइ करिणो छा पवंदो पाण खे ॿूटा काइणा पवंदा वण काइणा पवंदा ऐं निम जा वण कायो हींअर मौसम ॾाढी प्यारी आहे ऐं इन में जल्दी वण तयारु थी वेंदो आहे त उहो कायो पंहिंजे बचनि खे तालीम ॾियो ऐं जुमे जो भलारो ॾियारो आहे निमाज़ जी पाबंदी ज़रूरु कजो उन दौरान असांखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो इनशाला ताला हयाती रही त वरी नेक्स्ट प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु हूंदासीं विधि विधि ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग मुंहिंजे प्ले लिस्ट में आहे उहो बि प्ले कयां थो उनखे बि इंजॉय कयो ऐं असांखे बि पंहिंजे दुआनि में यादि रखिजो त ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह वाही अलह निगहबान।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

सा जो दीह मुसा आजारा मुझे सरते खून सवारा नकी मानी मुखे नसीबा नकी पानी मुखे नसीबा पेंजो पान सा कहर कयो मु पप्पीए सा परणो कयो

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 7 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी फोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बुशहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो।
1: अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मौजूदु बहरीन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ऐं जासूस जहाज़नि खे निशानो बणायो आहे। शाम में बि अमेरिकी फ़ौजी कमांड खे निशानो बणायो वियो। कतर, ओमान, कुवैत ऐं इराक में बि अमेरिकी अॾनि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं सबबि अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियत तबाह थी आहे।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाखलत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI खे चीन खिलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडुनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडुनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जी इलेक्शन में बि चीन हथ चुराइण जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइल्स हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडुनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूदु खामियूं ख़तमु थींदियूं।

सिंध हुकूमत पारां कराची जे यूनिवर्सिटी रोड जे मक़सद ट्रैफिक लेन जल्द खोलण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जी सदारत हेठि रेड लाइन BRT मनसूबे बाबति इजलास। मनसूबे जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जारी तामीराती सरगर्मियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शर्जील इनाम मेमण चयो त रेड लाइन BRT कराची वासियुनि लाइ इनकलाबी सफ़री मनसूबो आहे। रेड लाइन BRT जो कम जल्द मुकमिल करण तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण लाइ कदम खणी रही आहे।

डीजल 40 ऐं पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान ओकरा पेट्रोल जगहनि में रदो बदल बाबति समरी वज़ारत ॾांहुं मोकिले छॾी। ज़रियनि मूजिबि आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थियण बाद ओकरा पेट्रोल अघनि में वाधे जूं सिफ़ारिशूं तयारु कयूं आहिनि। हतमी फ़ैसिलो हुकूमत कंदी।

जोहर जमाली भरसा पुलिस जो डोहारिन सा मुकाबलो एक अहलकार शहीद एक जख्मी गोठ मजीद ओठो में पुलिस की कार्रवाई दौरान मुबैना तौर डोहारिन पुलिस ते फायरिंग कई गोलियों लगने सबब अहलकार वाजिद सूमरो शहीद ए गुलाम मुस्तफा चाचड़ जख्मी थी पो डोहारिन वाके बाद फरार थी वया।

कश्मीर जी चाचर पुल वट औरत जो लाश हथ मुड़स ते कतल जो इल्ज़ाम गोठ मुहिब अली नसीराणी वासण शरीफा नसीराणी जो लाश के भी फीडर में मिलियो औरत के वारसन चवाए तो खेस मुड़स कतल कयो आहे मुड़स जो चवण है ज़ाल घर निकरी के भी फीडर में टपो ने आपघात कयो आहे कुंडी वेझो रामू शाख मां बि लाश हथ सुञाणप कुंडी वासी उस्ताद रंजीत कुमार जे नाले सां थी पुलिस जो चवण आहे त वाक़िए बाबति वधीक जांच करे रहिया आहियूं

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी खाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी
0: पहचो शहर पहचो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: जी एफ एम 90.8
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: है
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे।
3: सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सुन

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर DFM88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: गया है ईरानी क़यादत के आगाह कयो वियो आहे त हुसैन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो पाकिस्तानी क़यादत धुरिन खे मुतमिन करण जी कोशिश करे रही आहे यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौज जवान मुक़ररु थियल आहिनि हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाडन सऊदी अरब में मुक़ररु आहे पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआहिदो कयो हो
5: अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 7 शहरी शहीद केतिरा ई ज़ख़्मी ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह कयो वियो हू शहर नोरस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि पुलनि नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो
4: अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान बहरीन कुवैत शाम कतर ऐं इराक में जवाबी हमला अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा पासदारनि इनकलाब मौजूदु बहरीन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ऐं जासूस जहाज़नि खे निशानो बणायो आहे शाम में बि अमेरिकी फ़ौज कमांड खे निशानो बणायो वियो कतर ओमान कुवैत ऐं इराक में बि अमेरिकी अॾनि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे जंहिं सबबि अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियत तबाह थी आहे
5: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो कम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडुनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे चीन अमेरिकी सदारती चूंडुनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो 2020 जी इलेक्शन में बि चीन हथ चुराइण जी कोशिश कई हुई चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइल्स हासिल करे वरितियूं आहिनि अमेरिकी गुझा इदारा चूंडुनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूदु ख़ामियूं ख़तमु थींदियूं

0: सिंध हुकूमत पारां कराची जी यूनिवर्सिटी रोड।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लॻण, पुराणन ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ரணசத டாப்புத்து.
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्टों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्टों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: बहन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
1: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा पड़ पड़ करके
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में

0: तेज ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप,
0: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप,
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
1: सुनते रहो GFM 90.8।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

चीन पाकिस्तान जो एतमाद जोगो ऐं मुख़लिस दोस्त आहे। चीन जे जी मौजूदा सीड़पकारी सीपेक टू ॾांहुं अहम कदम आहे। इस्लामाबाद में बीटूबी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त चीन हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में सीड़पकारी बि वधी आहे। सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदीअ ते हमिलो पाकिस्तान ते हमिलो सम्झो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। काबुल इदारे मूजिबि पाकिस्तान जी आला सियासी अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसिन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई वाइदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो। मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो। पाकिस्तानी क़यादत धुरियुनि खे मुतमइन करण जी कोशिश करे रही आहे। यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़रर थियल आहिनि। हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुक़रर आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआहिदो कयो हो।

अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 7 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी फोर्स बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बू शहर, नूरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरैन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मूजिबि बहरैन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऐं जासूस जहाज़नि खे निशानो बणायो आहे। शाम में बि अमेरिकी फ़ौजी कमांड खे निशानो बणायो वियो। कतर, ओमान, कुवैत ऐं इराक में बि अमेरिकी अॾनि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं सबबि अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियत तबाह थी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाखलत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम मिले छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडुनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडुनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जी इलेक्शन में बि चीन हथ चुराइण जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइल्स हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडुनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़तम थींदियूं। KP जे इलाइक़े बनू में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि बनू जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कया विया। 24 कलाकनि दौरान ऑपरेशन दौरान 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। दहशतगर्दनि वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद मिलियो आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां ख़ारजनि खे जहनुम भेड़ो करण ते फोर्सिस खे भेटा पेश। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान जी बका जो ज़ामिन आहे। आईनी ऐं कानूनी मामला धरणा ॾियण सां हल नाहिनि थींदा। एहतजाज कंदड़नि खे ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त मुल्क में वॾनि तरक़ियाती मनसूबनि जो क्रेडिट नून लीग ॾांहुं वञे थो। हाणे बि तरक़ियाती कम नून लीग ई करे रही आहे। सोलर सिस्टम जी शफ़ाफ़ विरासत यकीनी बणाइण जी हिदायत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 2,75,000 ख़ानदाननि खे मुफ़्त सोलर सिस्टम फराहम कयो वेंदो। 18 अरब 20 करोड़ ऐं 60 लख रुपया ख़र्च थींदा। मुराद अली शाह चयो त हीउ मनसूबो रुगो बिजली न पर ग़रीब ख़ानदाननि जी ज़िंदगी बहितर बणाईंदो। पुठिते पयल इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हुनि खे मनसूबे में तरजीह ॾिनी वञे। सिंधु हुकूमत पारां कराचीअ जे यूनिवर्सिटी रोड जे मिक्स ट्रैफिक लेन खे जल्द खोलण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शजीलना मेमन जी

थिएटर रेड लाइन बीआरटी मनसूबे बाबति इजलास मनसूबे के मुख्तलिफ़ हिसन से जारी तामीराती सरगर्मियों को जायजो वरतो वियो। शहजी लीना मेमन चयो त रेड लाइन बीआरटी कराची वास इनकलाबी सफरी मनसूबो आहे। रेड लाइन बीआरटी जो कम जल्द मुकमल करण तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण जे लाइ कदम खणी रही आहे। डीज़ल 40 ऐं पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। ओगरा पेट्रोल जे घर में रदो बदल बाबति समरी वज़ारत ॾांहुं मोकिले छॾी। ज़रियनि मूजिबि आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थियण बाद ओगरा पेट्रोल अघनि में वाधि जूं सिफ़ारिशूं तयारु कयूं आहिनि। हतमी फ़ैसिलो हुकूमत कंदी। चूहर जमाली भरिसां पुलिस जो ॾुहारनि सां मुक़ाबिलो। हिकु अहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठ मजीद ओठो में पुलिस जी कार्रवाई दौरान मुबैना तौर ॾुहारनि पुलिस ते फायरिंग कई। गोलियूं लॻण सबबि अहलकार वाजिद सुमरो शहीद ऐं ग़ुलाम मुस्तफ़ा चाबड़ो ज़ख़्मी थियो। ॾुहारी वाके बाद फरार थी विया। कश्मोर जी चाचर पुल वटि औरत जो लाश हथ मुड़ुस ते क़तल जो इल्ज़ाम। ॻोठ मुहिब अली नसीराणी वासियुनि शरीफ़ा नसीराणी जो लाश केबी फीडर मां मिलियो। औरत जे वारसनि चयो आहे त खेसि मुड़ुस क़तलु कयो आहे। मुड़ुस जो चवणु आहे त ज़ाल घरां निकिरी केबी फीडर में टपो ॾेई आपघात कयो आहे। कुंडी वेझो रामो शाख मां बि लाश हथे सुञाणप कुंडी वासी उस्ताद रंजीत कुमार जे नाले सां थी। पुलिस चयो आहे त वाके बाबति वधीक जांच करे रहिया आहियूं। निंदो में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुतहद ऐं मज़बूत सिंध रैली। बदीन खे पाणी ॾियण ऐं प्रिया कुमारी समेत अॻवा थियल ॿार आज़ाद कराइण जो मुतालबो। नसीराबाद ऐं भर पासे में पाणी खोट ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक पारां احتجاج कयो वियो। मुजाहिरीन जो ज़रई पाणी ॾेई फसल बचाइण जो मुतालबो।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आए सऊदी ते हमलो पाकिस्तान ते हमलो समझो वेंदो पाकिस्तान सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो ख़बरदारे मूजिबि पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसियन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो पाकिस्तानी क़यादत धुरियन खे मुतमिन करण जी कोशिश करे रही आहे यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़र थियल आहिनि हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुक़रर आहे पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआहिदो कयो हो अमरीका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो अमरीकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद 20 ज़ख़्मी ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो बो शहर लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि पुलनि नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो लोरिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमरीका तबाह करे छॾियो अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ा ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा उमान बहरेन कुवैत शाम कतर ऐं इराक में जवाबी हमला अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो पाइण जी दावा पासदारनि इनकलाब मौजूदु उर्दन में हमले जे नतीजे में अमरीकी वेड़ाक जहाज़ तबाह थिया आहिनि उमान में अमरीका जे जदीद रेडार सिस्टम खे तबाह कयो वियो शाम में बि अमरीका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि पोइ ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तसदीक करे छॾी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चुराइण जो इल्ज़ाम नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ु जांच जो हुकुम क़ौम खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमरीकी गुचाए दारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि चीन जी सदर ट्रंप जे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो चीनी परॾेही वज़ारत मूजिबि चीन खे अमरीकी चूंडनि में मुदाख़लत करण में दिलचस्पी नथो रखे इल्ज़ामनि जो मक़सदु चीन खे बदनाम करणु आहे

खेपी इलाइक़े बनू में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन 24 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब बनू के मुख़्तलिफ़ इलाइक़न में ऑपरेशन कया विया। 24 कलाकन दौरान 24 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दन वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद मिलियो आहे। दहशतगर्द मासूम शहरीन मुलविस विया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां खारजियुनि खे जहनुम भीड़ो करण ते फोर्सिस खे भेटा पेश।

एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका जो जामिन है। आईनी कानूनी मामला धरना डेण से हल ना एहतजाज कदड़ के गालू कर घुर्जन। वजीर आजम के सलाहकार राना सनाउल्ला तो मुल्क में वन तरक्याती मनसूबन जो क्रेडिट नून लीग डां वे तो हाँ भी तरक्याती कम नून लीग ही कर रही है। वडे वजीर की सदारत हेठ सोलर होम सिस्टम मनसूबे बाबत इजलास। मुराद अली शाह पारा सोलर सिस्टम की शफाफ विरासत यकीनी बनने की हिदायत। इजलास के ब्रीफिंग डींदे बुधा वो तो 2,75,000 खानदान के मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराम किया वो 18 अरब 20 करोड़ 60 लख रुपया खर्च। मुराद अली शाह चयो तो यह मनसूबो रुगो बिजली न पर गरीब खानदान की जिंदगी बेहतर बनाई पुठते पियल इलाक में रहदड़ मानून के मनसूबे में तरजीह दिनी वे। सिंध हुकूमत पारा कराची की यूनिवर्सिटी रोड के मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलण जो फैसलो। सीनियर वजीर शजील नामेमर की सदारत हेठ डेडलाइन बीआरटी मनसूबे बाबत इजलास। मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से जारी तामीराती सरगर्मियों को जायजो वरतो वो। शजील नामेमर चो तो रेडलाइन बीआरटी कराची वासन इनकलाबी सफरी मनसूबो है। रेडलाइन बीआरटी जो कम जल्द मुकम्मल कर तरजीह है। सिंध हुकूमत शहरी के जदीद सफरी सहूलतू डेण लाय कदम खड़ी रही है। डीजल 40 ए पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महंगो थे इम्कान। ओगरा पेट्रोल के अगन में रदोबदल बाबत समरी वजारत दा मोकले छी। जरियन मूजिब आलमी मार्केट में कच्चो तेल महंगो थे बाद ओगरा पेट्रोल अगन में वाद जू सिफारिशू तैयार क्यों हतमी फैसलो हुकूमत कंदी। चूहड़ ज माली भरसा पुलिस जो डोहारियन से मुकाबलो। एक अहलकार शहीद एक जख्मी। गोठ मजीद ओटो में पुलिस की कार्रवाई दौरान मुपैना तौर डोहारियन ने पुलिस से फायरिंग कई। गोलियों लगन सबब अहलकार वाजिद सुमरो शहीद है। गुलाम मुस्तफा चावड़ो जख्मी थो। डोहारी वाके बाद फरार थी गया। कश्मोर की चाचड़ कुलवट औरत जो लाश हथ मुड़स से कतल जो इल्जाम। कोर्ट मुहिब अली नसीराणी वासण शरीफा नसीराणी जो लाश केबी फीटर में मिलो। औरत के वारिसन है केस मुड़स कतल किया है। मुड़स जो चवण है जाल घर निकरी केबी फीटर में टपो दई आपघात किया है। कुंडी वेझो रहमोर शाह माँ भी लाश हथ सुप कुंडी वास उस्ताद रंजीत कुमार के नाले से थी। पुलिस है वाक्य बाबत जांच कर रहा है। निंदो में कौमी अवामी तहरीक पारा मुतहद ए मजबूत सिंध रैली। बदीन के पानी दियण ए प्रिया कुमारी समेत अगवा थियल बार आजाद करण जो मुतालबो। नसीराबाद ए भरपासे में भी पानी कोट खिलाफ कौमी अवामी तहरीक पारा एहतजाज किया। मुजाहिरन जो जरई पानी दई फसल बचाण जो मुतालबो।

0: चंबड़ में खुताबी के मुबैना तौर जहर दही कत्ल करने वाले वाक्य जो केस दाखिल वालिद पारा दाखिल करायल केस में बिन चरण के नामजद कयो वियो। पुलिस केस में नामजद बिन्ही जवाबदार नूर अली बबर ऐं उस्ताद रियाज अली कारियो के गिरफ्तार करे वरतो। वालिद मूजिब पुट के जबरदस्ती ज्यादती जो निशानो पाइण बाद जहर दही कत्ल कयो वियो। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर में आबाद करण जा पानी की खोट खिलाफ़ मुजाहरा धरना सोबतपुर डेरा अलायार में आबाद करण रैलियों कड़ी धरना हया। सोबतपुर में जुडीर शाख की पूछड़ी के आबाद करण पारा एहतजाज किया। डेरा अलायार में भी आबाद करण पानी खोट खिलाफ़ जीरो पॉइंट से धरणो हो जरिए पानी फराहम कर फसल बचाने का मुतालबो। कंदकोट में जसकम की प्रिया कुमारी समेत मफी बार बाजाबी लाई रैली जसकम कारकुन पारा शहर का प्रेस क्लब ती रैली कड़ी वही। प्रिया समेत समूर मफी बार बाजियाब कर मुतालबो। अगवाण तो पुलिस प्रिया समेत मफी बार बाजियाब ना कराए सी नोटिस वो वे। थोड़ी भरसा हले पुट बिरादरी जो पन्नो अकिल पुलिस खिलाफ एहतजाज करण जो तकदस पामाल कड़ अहलकार खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। मुजाहन तो पन्नो अकिल पुलिस बिना जवाब दरन से चढ़ाई कई है बिना जवाब चढ़ाई जो सिलसिलो बंद कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे। दादण भरसा घोट बेलाई कलोड़ो में कत्ल कल नौजवान तालिब कलोड़ो के केस में नामजद जवाबदार की गिरफ्तारी लाए वारिसन जो एहतजाज। घोटाणन पारा नव घोट के एल एस बंद वट मुजाहरो कर धरणो भी हयो। घोटाणन मूजिब पुलिस नौजवान के कत्ल केस में नामजद जवाबदार गिरफ्तार न कर रही है नोटिस वी कातिल गिरफ्तार कर। एंडी ब्रहम बरतानिया के लेबर पार्टी बिना मुकाबले सरबराह चूंड वो। एंडी ब्रहम सूमर से बरतानिया के नए वजीर आजम तौर उहदे जो हल्फ कड़ों। बरतानिया जो वजीर आजम सर कियर स्टामर इंदर सूमर से बादशाह चार्ल्स के पेंजी इस्तीफा पेश कद जै बाद एंटी बनम पेंजी काबीना जो ऐलान कद।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन खेडियो एक नौ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधी का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जीवन अधूरा ख्वाब।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

सिंध जे एहतजाज एतराज ऐं सिंध असेंबली जे ठहराउ खे रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पाणी छोड़ करे छॾियो। रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पाणी आज़माइशी बुनियादनि ते न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ कयो वियो। रसूल हेडवर्क्स तां लॻभॻि 1,350 क्यूसिक पाणी छोड़। इरसा तर्जुमान जो चवणु आहे त पंजाब पंहिंजे हिसे जो पाणी न्यू जलालपुर कैनाल में छॾियो आहे, असांखे को एतिराज़ु नाहे। इरसा 2014 में ई न्यू जलालपुर कैनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 ईस्वी में जलालपुर कैनाल जी सिंध मुखालफ़त कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल ख़िलाफ़ CCI में बि आवाज़ उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गॾियल मफ़ादनि वारे काउंसिल अञा ताईं न्यू जलालपुर कैनाल जी मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरी खां सवाइ कैनाल खोलणु मुनासिबु नाहे। प्रिया कुमारी समेत सिंध मां 10 खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल मासूम ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ बबलो बाईपास वटि धरणो। 22 ॾींहं वीचारी कुझु देरि बाद क़ौमी शाहरा बंदि करण जो ऐलान। सिंध वासियुनि खे शिरकत जी अपील। प्रिया एक्शन कमेटी जे अॻवाननि जो चवणु आहे त क़ौमी शाहरा ते धरणो ॿारनि जी बाज़ियाबी ताईं जारी रहंदो। पाकिस्तान खिते में अमन जी क़याम लाइ अहम किरदार अदा कयो आहे। खिते में जारी बुहरान समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो। गॾियल ऐं मज़बूत कोशिशूं ई अमन जो सबबु बणिजी सघनि थियूं। इस्लामाबाद में B2B कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त अमन अमल में फील्ड मार्शल जूं कोशिशूं तारीख़ में सदाई यादि रखियूं वेंदियूं। चीन पाकिस्तान जो इतमाद जोगो ऐं मुख़लिस दोस्त आहे। चीन हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। सिहत जे शोबे में $44 करोड़ जा मुआदा सुठो सवण आहिनि। सीड़पकारीअ ते चीनी ऐं पाकिस्तानी सीड़पकारनि खे भेटा पेश कयां थो। सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदीअ ते हमिलो पाकिस्तान ते हमिलो सम्झियो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। खाबरू इदारे मूजिबि पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो त हुसिन सऊदी अरब ते हमिला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई मुआदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो। मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो। पाकिस्तानी क़यादत धुरिन खे मुतमैन करण जी कोशिश करे रही आहे। यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़रर थियल आहिनि। हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुक़रर आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआदो कयो हो।

अमेरिका जा ईरान ते छह ॾींहं बि मिसाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद 20 ज़ख़्मी थी पिया। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह कयो वियो। बूशहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे बि निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमरीका तबाह करे छॾियो। अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जी दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब मूजिबि उर्दन में हमले जे नतीजे में अमरीकी विढ़ाक जहाज तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमरीका जे जदीद रेडार सिस्टम खे बि तबाह कयो वियो। शाम में बि अमरीका जो कमांड सेंटर तबाह कयो वियो आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तस्दीक करे छॾी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर जो चवणु हो त अमरीकी ॻुझा इदारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। चीनी सदर ट्रंप जे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत मूजिबि चीन खे अमरीकी चूंडनि में मुदाख़लत करण में दिलचस्पी नथो रखे। इल्ज़ामनि जो मक़सदु चीन खे बदनाम करणु आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ?
2: न दा, आसाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पंजाब सिंध जे एहतजाज एतराज ऐं सिंध असेंबली जे ठहराउ खे रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर केनाल में पाणी छोड़ करे छॾियो। रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पाणी आज़माइशी बुनियादनि ते न्यू जलालपुर केनाल में छोड़ कयो वियो। रसूल हेडवर्क्स तां लॻभॻि 1,350 क्यूसिक पाणी जो छोड़। इरसा तर्जुमान जो चवणु आहे त पंजाब पंहिंजे हिसे जो पाणी न्यू जलालपुर केनाल में छॾियो, असांखे को एतिराज़ न आहे। इरसा 2014 में ई न्यू जलालपुर केनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 में जलालपुर केनाल जी सिंध मुखालफ़त कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी केनाल ख़िलाफ़ CCI में भी आवाज़ उथारे हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल अञा ताईं न्यू जलालपुर केनाल जी मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरी खां सवाइ केनाल खोलणु मुनासिबु नाहे। प्रिया कुमारी समेत सिंध मां 10 खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ बबरलो बाईपास वटि धरणो 12 ॾींहं बि जारी। कुझु देर बाद क़ौमी शाहराह बंदि करण जो ऐलान, सिंध वासियुनि खे शिरकत जी अपील। प्रिया एक्शन कमेटी अॻवाणनि जो चवणु आहे त क़ौमी शाहराह ते धरणो 12 जी बाज़ियाबी ताईं जारी रहंदो। पाकिस्तान ख़िते में अमन जे क़याम लाइ अहम किरदार अदा कयो आहे। ख़िते में जारी बहरान समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो आहे। गॾियल ऐं मज़बूत कोशिशूं ई अम बणजी सघनि थियूं। इस्लामाबाद में B2B कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त अमन अमल में फील्ड मार्शल जूं कोशिशूं तारीख़ में सदाई यादि रखियूं वेंदियूं। चीन पाकिस्तान जो इतमाद जोगो ऐं मुख़लिस दोस्त आहे। चीन हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो आहे। सिहत जे शोबे में $44 करोड़ जा मुआदा सुठो चवण आहिनि। सीड़पकारी ते चीनी ऐं पाकिस्तानी सीड़पकारनि खे भेटा पेश कयां थो। सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदी ते हमिलो पाकिस्तान ते हमिलो सम्झो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। ख़बरू इदारे मूजिबि पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसियन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई वाइदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो। मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो। पाकिस्तानी क़यादत तुरियन खे मुतमिन करण जी कोशिश करे रही आहे। यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़ररु थियल आहिनि। हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुक़ररु आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआहिदो कयो हो। अमरीका जा ईरान ते 6 ॾींहं बि मिसाइल हमला, पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमरीकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख़्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बोशहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमरीका तबाह करे छॾियो। अमरीकी सिटकाम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरेन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। ख़ासदार इनकलाब मूजिबि उर्दन में हमले जे नतीजे में अमरीकी विड़ाक जहाज तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमरीका जे जदीद रडार सिस्टम खे तबाह कयो वियो। शाम में बि अमरीका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तसदीक करे छॾी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चुराइण जो इल्ज़ाम। नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकम। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमरीकी गुझा इदारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। चीन सदर ट्रंप जे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत मूजिबि चीन खे अमरीकी चूंडनि में मुदाख़लत करण में दिलचस्पी नथो रखे। इल्ज़ामनि जो मक़सदु चीन खे बदनाम करणु आहे।
केपी जे इलाइक़े बनू में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि बनू जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कया विया। 24 कलाकनि दौरान 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। दहशतगर्दनि वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद मिलियो आहे। दहशतगर्द मासूम शहरियुनि जे क़तल में बि मुलविस हुया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां ख़ारजियुनि खे जनम भीड़ो करण ते फोर्सिस खे भेटा पेश।

0: एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान जी पका जो ज़मीन आहे। आइनी ऐं कानूनी मामला धरणा ॾियण सां हल न थींदा। एहतजाज कंदड़नि खे ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त मुल्क में वॾनि तरक़ियाती मनसूबनि जो क्रेडिट नून लीग ॾांहुं वञे थो। हाणे बि तरक़ियाती कम नून लीग ई करे रही आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, ऑइंटमेंट सूर खां आराम।
2: फ़क़ीरी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता। माँ तलाक याफ्ता होना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सॉन्ग नहीं उठाते।

0: कफील, देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज

0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार,
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

पंजाब संजय एहतजाज ऐं एतराज़ खे रद्द कंदे तकरारी ड्यू जलालपुर केनाल में पाणी छोड़ करे छॾियो। रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पाणी आज़माइशी बुनियादनि ते न्यू जलालपुर केनाल में छोड़ कयो वियो। रसूल हेडवर्क्स तां लॻभॻ 1,350 क्यूसिक पाणी जो छोड़। इसरा तर्जुमान जो चवणु आहे त पंजाब पंहिंजे हिसे जो पाणी न्यू जलालपुर केनाल में छॾियो, असांखे को एतराज़ न आहे। इसरा 2014 में ई न्यू जलालपुर केनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 में जलालपुर केनाल जी सिंध मुखालफत कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी केनाल ख़िलाफ़ CCI में बि आवाज़ उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गॾियल मफ़ादनि वारे काउंसिल अञा ताईं न्यू जलालपुर केनाल जी मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरी खां सवाइ केनाल खोलणु मुनासिब न आहे।

0: शहबाज शरीफ साहब को बाजाबता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ये दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में है ना, जिसका जहनियत यही होगा वो तो उनको कोई फिक्र नहीं है। एहतजाज करने वाले बुरा भला होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। अगर हमारे कश्मीर के माए बहने आंसू रो रहे हैं तो हमारे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं।
1: एक वफाकी वजीर चवे तो 12 सीटू संदन खीसे में आहन, जैंजी जहनियत अड़ी हुंदी तो उनके कश्मीर जी भी का परवाह न हुंदी। नून लीग डडियाल मीरपुर कोटली रावला कोट के कश्मीर जो हिस्सो ही नथी मंजे। वजीर आजम वाजे करे तो बचावर वजीर जेको चई रो आहे उहा संदस पॉलिसी आहे या न। बचावर वजीर जो बयान वजीर आजम जी पॉलिसी ना है तो खेस लत हणी बाहर कढ़ी छे। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में चूं जलसे के खिताब। बिलावल भुट्टो तो कहें एक की गलती की सजा बे के न मिलन घुर्जे, एहतजाज कंदड़ गलत हुंदा पर सजा पूरी कश्मीर के मिली रही है। एहतजाज कंदड़न हुकूमत का मुतालबो है तो आम कश्मीर के तकलीफ न दियो। तजवीज दिनी तो ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन जोड़ी वे पर वक्त तक एहतजाज कंदड़न नहीं वरी हुकूमत।

0: अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख़्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बूशहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बि बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमरीका तबाह करे छॾियो। अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरेन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो पाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मूजिबि पुरतनि में हमले जे नतीजे में अमरीकी विड़ाक जहाज तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमरीका जे जदीद रेडार सिस्टम खे तबाह कयो वियो। शाम में बि अमरीका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतिराई अमरीकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तस्दीक करे छॾी।
1: खैबर पख़्तूनख़्वा जे इलाइक़े बनू में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन, 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। SPR मूजिबि बनू जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कया विया। 24 कलाकनि दौरान 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्द मासूम शहरनि जे क़तल में बि मुलविस हुआ। सदर ऐं वज़ीर आज़म तोड़े घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां ख़ारजियुनि खे जहनम बेड़ो करण ते फोर्सिस खे भेटा पेश।

0: सिंध जो पाणी ऐं नाणो लिखी पढ़ी वफ़ाक हवाले कयो वियो आहे। सिंध ते नओं वन यूनिट मरण जूं कोशिशूं थी रहियूं आहिनि। अवाम सजाग थिए। SUP सदर सैयद ज़ैन शाह जो पाणी बहरान ऐं NFC बाबति उमरकोट में सेमिनार खे ख़िताब। ज़ैन शाह चयो त आईन ऐं पार्लियामेंट खां मथां को बि फ़ैसिलो क़बूल न कंदासीं। पाणी ऐं धरती बचाइण ख़ातिर अमली तौर मैदान ते निकिरणो पवंदो।
1: लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम PPHI में ज़िम करण कराचीअ में लेडी हेल्थ वर्कर्स जो एहतजाज। सुभाणे शहीद बेनज़ीर जी मज़ार अॻियां धरणे जो ऐलान। बुशरा आराई जो चवणु आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम PPHI में ज़िम करण सां वर्कर्स जे हक़नि ते धाड़ो लॻंदो। सुभाणे शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार अॻियां धरणो हणी खेसि दाह ॾींदासीं। बिलावल भुट्टो खां बि मुतालबो आहे त लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम PPHI में ज़िम करण वारो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे।

0: एंडी बरहनम बरतानिया जे लेबर पार्टीअ जे बिना मुक़ाबले सरबराह चूंडिजी वियो। एंडी बरहनम सूमर ॾिहाड़े बरतानिया जे नए वज़ीर आज़म तौरु उहिदे जो हलफ़ खणंदो। बरतानिया जो वज़ीर आज़म सर केर स्टार्मर ईंदड़ सूमर ते बादशाह चार्ल्स खे पंहिंजी इस्तीफ़ा पेश कंदो।
1: वेस्ट इंडीज जो लेजेंडरी ऑलराउंडर सर गेरी फ्लेट सोबर्स 79 वरियन की जमात में लाडाणो करे वो। गेरी सोबर्स 1954 का 1974 ताई वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी कई।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।